सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

0: सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मनुख सोहणिया।

बैक फ्रेंड्स ते अस गल करा दे हे डुगर प्रदेश ते सोने सोने पिकनिक स्पॉट्स ते विजिटिंग प्लेसेस दी ते जदों गल आंदी है विजिटिंग प्लेसेस दी ते सब तो पहला जेड़ा ना हर बच्चे बच्चे दी जुबान पर आंदा है वो है पत्नी टॉप। हुन तो सोचा दे उन्हें पत्नी टॉप किस चीज है, इत्थे दियां पत्नियां के बड़ी टॉप दी होंदियां ने। वो तो खैर मैं नहीं पता, वो तो उहे दस ही सकदे ने जिन्हें उत्थे दी कुड़ियां ब्याई दियां नू, पर आई एम श्योर अच्छियां गै होनियां ने। एक्चुअली इस जगह का नाम पत्नी टॉप पे आया है, पहली सी आखदे है पटन दा तलाब, मतलब राजकुमारी दा तलाब आखदे ने। उस टाइम पर जिहड़ी उत्थे दी रानी ही वो उत्थे तलाब पर नाव नहीं आउंदी है रोज, तो इसे करिए उहदा नाम पईआ राजकुमारी दा तलाब, मतलब पटन दा तलाब। बाद च करदे करदे काफ़ी अरसे बाद वो पटन दा तलाब बनिया, सरल भाषा ही आखने पत्नी टॉप। तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोरम जिहा निका हरा इलाका है जम्मू का, ये करीबन 112 किलोमीटर अगे पौंदा है। तो जम्मू का टैक्सीज वगैरह ले सकते हो, हायर टैक्सीज बड़ी ईजीली अवेलेबल हो जाएं ने। तो तुम जम्मू का या कटरे का आफ्टर दी वैष्णो देवी यात्रा यू कैन प्रोसीड फॉर दी पत्नी टॉप ऑल्सो। अगला गाना सुनो पहले तो।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सो बिल्कुल जी 905-673-3337 जुड़े हुए हो पंजाबी लहरां दे नाल। स्टूडियो देखने के मुताबिक 7:29 हो चुके हैं। मेरे नाल पंजाब दी धरती रमेश हुशियारपुरी जी जुड़े हुए ने। देश दुनिया की खबरों से सांझ पा रहे हैं, पर फिलहाल तो असी पंजाब तो ही नहीं बाहर आ रहे। सो बहुत सारिया खबरें ने, पंजाब दी गल्लां बातां होर करांगे, बहुत सारिया कॉल्स ने। असी 10 मिनट तक कॉल लवेंगे, 10 मिनट होर खबरों के नाल जुड़ांगे। सो अगली खबर वाल चलते हैं। रमेश जी, रवनीत बिट्टू के जिहड़े तत्ते शब्द आ हुणे तुसीं जिक्र करके हटे हो कि कुछ क शब्द होंदे जिहड़े कांग्रेस नूं देने पै जांदे आ, कुछ क BJP दे बड़े। सो ये जिहड़ियां बयानबाजियां कई वारी महंगियां भी पै जांदियां। सो रवनीत बिट्टू के जिहड़े तत्ते शब्दों की गल करिए, पंजाब विच उस ते भी हुण सियासत गरमाई हुई आ।
3: प्रभ संधु जी, रवनीत बिट्टू की गल मैं करन लगा, परंतु नाल ही मेरी तुहानू भी गुजारिश है कि मैं चाहुंदा है कि तुसी बली पंत जाणो

आगाज खूबसूरत सुविधा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मकान सी है। चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रहे, टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। हार्दिक स्वागत करते हैं, उम्मीद दिन खुशखबार, चढ़दी कला वाला निरपाऊ निर्वैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुम चलते रहोगे। अद्भुत यानी कि एक लाजवाब गलबात शामिल हो रहे हैं, जो कि ठीक 10 बजे तक तुम सा जिते चलेंगा चलूंगी नाल तेरे पर टिकटा दो ले ली। थोड़ी टिकट 905-673-3337 देते सानू कॉल कर रहे हैं, 9056-733-3337 देते तुसी जो सर नाल अपनी गलबात कर रहे हो। एक सफ़र बहुत खूबसूरत पर थोड़े साथ दे नाल, और नाल नाल तुसी एक सफ़र जो जिंदगी दा, क्योंकि जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है, अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतजार है, भूखे को रोटी का, बेकार को रोजी का इंतजार है। इंतजार दे विच सानू शामिल करदे हो ते साडा इंतजार करदे हो, बहुत बहुत शुक्रिया, असीं भी तुहाडा इंतजार करदे हां।

0: Namaskar, Sasikal, I am your Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mata Ji Ki Chowki.
1: Maan tu badaya mera dukh saare taal ke.
0: On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hoon ki ye shaam music aur bhakti se bhari hogi. Hum is दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सबने अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है. सो गाइज सी यू ऑन 4th September.

0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दिखी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा दो में लाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा दो में लाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
4: Toronto's number one station, AM 530.
5: Punjabi Versa!

0: चार।
1: कैसे लफज है यार है? असी मूह चो रब रब करते हैं, माला फेरते हैं, होर धार्मिक अदारियां ते जाने हैं, पर जे अंदरों बेईमानी भरी हुई है, अंदरों दूजे प्रति तुहाडे जे एक विरोध भरिया होया, साड़ भरिया होया, ते फिर वो नाम जपन दा नहीं फायदा कोई, फिर नहीं गल बननी। जे जिन्ने मर्जी मत्थे टीक लो जाके, जिन्नी मर्जी नमाजा पढ़ लो, जिन्ने मर्जी गीता दे पाठ पढ़ लो, जिन्ने मर्जी जीसस महाराज नूं ध्या लो, जे घर च बैठे पेरेंट्स नूं नहीं मान इज्जत दिंदे आ ना, ते फिर नहीं किते गल बननी, फिर नहीं गल बननी किते। घरे बैठी आ मां, ते घरे बैठा बापू जिहनूं रोटी भी चज्ज नाल नहीं मिलदी हैं, ते गुरद्वारे आटिआं दे बैग लै के जाने आ, ते फिर नहीं गल बननी। घरे बैठी है अबू जान, ते घरे बैठी है अम्मी जान, ते उत्थे जाके पांच पांच नमाजा पढ़दे आ, ओ फिर गल नहीं बननी हैं। घर च आपके बैठे हैं पिता जी, आपकी बैठी है माता जी, मम्मी जी बैठी है आपकी, बीजी बैठे हैं, तो उधर मंदिर में जाके गीता का पाठ करो भाई जान, फिर बात नहीं बननी। बात फिर ही बननी है जो अपने अंदर से सिर्फ ते सिर्फ अपने पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करो, ते फिर जाके गल बननी है। जड़े बाहरों जपते ना, ते अंदरों मन च बेईमानी आ, इत्थे लोगों नाल फ्रॉड करते हैं। एक फ्रॉडी बंदा इत्थे, बिल्कुल फ्रॉडी बंदा, खास करके इधर ओ लोगों की इनिया बादुआं लईआं, इनिया बादुआं लईआं उस बंदे ने। वो कहंदे हुंदे वी जदों, मैनू ज़्यादा पता नहीं, जिहड़ियां साडियां मुस्लिम फैमिली सुन रही आ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kuman of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, Sipal Devicho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options, Sonu Chai Dene, Jantusi Visa Services, Sipal Devicho, Puri Family Vacation Upper Jan the Sochune, Jitanu All Inclusive Vacation Packages, Pimildene, Ponchna Maji, Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper, Kal Kar Sakdeo 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
6: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
7: 4156-570-1157
8: आज खुश तो बात हो गया। जब वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स हो गए इनक तो बन दी है।
7: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
8: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स इंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा है?
9: क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
8: ओ भाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
8: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com। होर कोई सेवा?
11: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां।
12: What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर।

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा दो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अंबड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गब्बरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार ना दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य खट्टे दे लेके रंग तुहाडे रूबरू लेके आ रहे हैं।

0: क्या बात है यार, क्या बात है
1: जी। जी नागपाल साहब, जिवें आपां बैंक तों लोन लैंदे आ तां आपां नूं ना बहुत ज़्यादा डाकूमेंटां दी लिस्ट दे दिंदे आ, उह कई वार तां बंदा उहनूं इकट्ठे करदा करदी उलझ जांदा, पता ही नहीं लगदा वी आह पेपर कित्थे आ, मेरे कोल हैगा जां नहीं हैगा। जिवें हुण तुसीं दस रहे हो वी इधर डाकूमेंट कहड़े कहड़े आपां नूं चाहीदे होणगे जां की मतलब की रिक्वायरमेंट्स हो सकदियां नेगियां
2: जी? इस पे ना एम्प्लॉयमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, आपका एनुअल लगता, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट लोन दे रही है 50,000 से 1,70,000 डॉलर का, बैंक नहीं दे रहा, कोई क्रेडिट चेक नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर। यस, बैंक वाले आपको पहले बोलेंगे कंपनी 2 साल पुरानी होनी चाहिए, ये वो ये वो। पर्सनल लोन तो वो आपको 10,000 डॉलर से ऊपर का देंगे ही नहीं
1: जी,
2: जो आज की हालत है, राइट। और इतना थप्पा लगेगा डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इतने लोग हासिल कर चुके हैं, 8 साल से हजारों प्रोसेस कर चुके, प्रॉपर ऑफिस है, टिम होटल में कोट पैंट पहन के नहीं मिलते, हमारे ऑफिस आइए 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, 6 बंदों का स्टाफ आपके लिए काम कर रहा है। यानी कि लोन आपको इससे बढ़िया मिल ही नहीं सकता। 2.5 साल बाद पहली किस्त स्टार्ट है, 2.5 साल बाद कहीं भी बरतो पैसे को, कहीं भी यूज करो, 0% ब्याज है 2 साल, उसके बाद भी ब्याज 2.5% साल का है, मतलब $1,00,000 पे महीने का ब्याज सिर्फ $200। कोई चलाकी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है, साफ काम है, साफ साफ साफ गारंटी। थाकर के फीस बताते हैं अपनी रेडियो पे $199 काम होने के बाद, शुरू में कुछ भी नहीं। कॉल करें, स्किल डेवलप करें, फंडिंग हासिल करें, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नागपाल साहब। तुसी भी जे कोई बंदा रहिंदा हैगा हले तक लोन नहीं लिया, क्योंकि पहला जिवें पहला ग्रांट वाला प्रोग्राम चलता सी उहदे विचों ही बहुत सारे बंदे रह गए सीगे, सो उहनां नूं तुसी जल्दी तों जल्दी कॉल कर लो 437-264-3175। तुहानूं आटो इंश्योरेंस दी जरूरत आ, तुहानूं होम इंश्योरेंस दी जरूरत आ, तां तुसी मेरे नाल संपर्क कर सकदे हो 647-627-88-20, 647-627-8820 दे उपर। प्रोग्राम दा समां समाप्त हो चुक्या गए, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

अपनी मैं शर्मसार जिहा हो गया, हथ बन तेरे कोल खल हो गया। हाय मैं शर्मसार जिहा हो गया, हथ बन तेरे कोल खल हो गया। तेरे कर्म सुबह

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कोई भी कार वैन ट्रक दा काम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डिया नूं लैके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर। टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी काम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है। स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक काम च, स्टील्स एंड मेलनी, रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1499-1 ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਟਿਊਨ ਚਲਾ ਤੀ ਗਾਣਾ ਚਲਾਇਆ ਨੀ ਸਵਾਲ

0: क्या बुलंद आवाज है, अमेजिंग। देखो नछत्र गिल भी यार लैजेंड बंदे ने, गुस्सा ना करी सूहे सूहे चीरे वाले आ है, ते फिर जो सैड गाने वाल आ जाइए फिर तो कमाल ही है। दिल दिता नहीं सी ते तारियां दी लोए मेरी जान है आपां दोए, गाया नहीं सी हुणे अपने हुसिंदर का भी शो होया ते बड़े लोगों ने इंजॉय किया जदों गिल साहब का गाया तारियां दी लोए। सो बहुत कमाल दे बड़े सिखे हुए ते बुलंद आवाज दे मालिक नछत्र गिल। प्रोग्राम पंजाबी लहरा तुसी सुन रहे हो ते अज एक गलबात असी सुबह कर रहे सी बड़ी दिलचस्प ते उहदे ते थोड़े चानण आपां फिर पावांगे, बट उस तो पहला थोनों असी लैके चलते हैं ग्रैंड होम फर्नीचर ते। इस फ्राइडे असी लाइव होवांगे ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड होम फर्नीचर तो, जिथे कि लेबर डे लोंग वीकेंड स्पैशल सेलां लग रही ने। ग्रैंड होम फर्नीचर 6885 टॉमकन रोड डेरी एंड टॉमकन जी। सुख भाजी
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नवी बाई जी। बिल्कुल लेबर डे लॉन्ग वीकेंड के उपर जी सेल लगन जा रही है, तो नवी बाई जी इस बार थोड़ी डिफरेंट कर दी है, पूरे का पूरा शोरूम ही चेंज कर दिता, सारी इन्वेंटरी जी नवी लैके आए हैं, जिसे 25-30 नवे बेडरूम सैट जो कभी मार्केट देखे नहीं होने, डिफरेंट तरीके के डिजाइन जो लेके आए हैं। ईवन सारी इन्वेंटरी कनेडियन मेड, रिकलाइनर भी बहुत डिफरेंट तरीके के हम डिस्प्ले के रख चुके हैं। ईवन डाइनिंग टेबल, पहला परिवार रियल मार्बल के डाइनिंग टेबल लेंदे सी, बहुत सारे परिवार कहते थे असं थलो गोल्डन सिल्वर बेस नहीं लेने, वो भी दोबारा कस्टम करके लाए हैं वुडन बेस के नाल, रियल मार्बल के डाइनिंग टेबल भी थोड़े लिए। सो पूरे का पूरा शोरूम जोड़ा थोड़े लिए चेंज कर दिता गया इस लॉन्ग वीकेंड के उपर, पर प्राइस पूरी मार्केट नालों लो ते तोहफे सारी मार्केट नालों बड़े बड़े सानू मिलने इस वीकेंड के उपर। सो जरूर एक चक्कर लाओ 6885 टॉमकन रोड के उपर, 6685 टॉमकन रोड डेरी टॉमकन की मेन इंटरसैक्शन है, हाईवे 410 तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी के उपर, 6885 टॉमकन रोड, 6685 टॉमकन रोड। नवी भाजी
0: क्या बात है, 6885 टॉमकन रोड आओ, नवी इन्वेंटोरी है, जो खरीदना खरीदो, ते तोहफा मैं वादा करता सी तोहफे बिना नहीं थोड़ा तोड़ दे, तुसी आओगे ना खास तौर पर फ्राइडे को आओगे जो असं लाइव उत्थे होवे, तोहफे ही तोहफे तोहफे ही तोहफे, तुम कहो नवी यार हमने इन्ने तोहफे तुम कितों दे रहे हो। सो जरूर बस देखो जो पंजाबी लहरां की टीम थोड़े लिए हाजिर है, थोड़ा किसी चीज़ की टेंशन लैन की लोड़ ही नहीं। सो ओके, बहुत सारे साढ़े वीर ने ज़्यादातर जो कि बाहर चलो पक्की एक फुल टाइम जॉब करते हैं, ठीक है ना, एंड बहुत सारिया लेडीज़ ने अपनिया जिहड़िया घरों काम कर दिए ने, ते वह भी बहुत मेहनत वाला काम है, वह कोई देखो निक्की मोटी गल नहीं हुंदी, तुसी घरे पूरा परिवार सांभ रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बट कई बार जदों बंदा थकिया हंबिया आउंदा ना अपने काम काज तो 10-12 घंटे की शिफ्ट ला के, तो बंदे नूं हुंदा यार कि मैं कोई घर का काम नहीं करना, मैं बस आना घर रिलैक्स करना, डिनर करना, टीवी देखना एक अद्धा घंटा, तो पैग शग लाना, तो दैट्स इट, मैनू कोई तंग ना करे, हुंदा ना थोड़े इदा। एक थोड़े नाल मैं थोड़े आ सिचुएशन शेयर करना है, जिस विच एक बंदा तो वह ना दिन विच 10-11 घंटे काम करता, वह कहिंदा नवी यार मैं घरे आना, तो घरे आउण सार घर वाली कह दिंदी है कि हाँ जी जी मेरे नाल लॉन्ड्री करा दो, या हाँ जी जी तुसी माड़ा वैक्यूम मार दो, तुसी ये कर दो वो कर दो, तो वह कहिंदा कि मैं उन्हूं बड़ी बार कहा कि देख तू सारा दिन घरे हुन्नी आ, तू बाहर सॉरी तू बाहर काम नहीं करदी, तू घर का काम दिने दिने कर लै कर, शाम नू कर लै कर, मेरे ते क्यों पाउनी आ। वह कहिंदी देखो जी थोनू की लगता है कि ये जिहड़े काम ने किते यू नो सौखे ने, घर संभालना, बाकी कुकिंग करनी, क्लीनिंग करनी, सारा कुछ यू नो टेक केयर करने कोई ईजी चीज़ थोड़ो है। वह कहिंदा देख ईजी तो है नहीं मैं मानता, बट जिनी मेहनत वाला काम मेरा बाहर जाना 10-11 घंटे लाने हथी काम करना, तो शरीर टुट जाता काम कर करके, तो तू घर आके मैं होर ड्यूटियां दे जानी है। सो सवाल मेरा यह है कि एक वाइफ जो वह अपने हसबेंड तो एक्सपैक्ट करती है कि ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵਾਈਫ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਂਭੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 905-673-3337 9056733337 9056733337 905-673-3337 9056733337 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਭ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਅਤੇ GTA ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। GTA ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਆਦਿ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ